मिलन गीत इतामत जनप्रियपूर्ण चित्रपट एक गीत गायन करानी मोहम्मद राफी मैं गीते अतुलतुना गीत चित्रपट गीत चित्रपट इतामत में जनप्रियपूर्ण चित्रपट एक लोपुराम सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम द फिल्म गीत दस पर डॉयट लीड सो नोएसन उन्होंने सिपसिक लीप दीसम फिल्म इन बॉलीवुड उन आइने फैमिलियन ड्रामा हाट दीसम फिल्म अलस गेसिस्ट गेहट राजेंद्र कुमार उन माला सिंह स्पील दीसम फिल्म उन कल्याण जी आनंद जी हाट म्यूजिक डिरिगेट सो कल्याण जी आनंद जी के संगीत इन रसवत्न मे चित्रपटे इन मे गीते गायने कराने गुल सक्सेना समग ज्योतिरा इल्याम